0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो पियोम चुनकेरे वेर क्वारो पिमार मैं पाचो
2: युआन लंग यू बिरोटा लोका कामु पेने
1: इटी विन्यो और रेडियो पियोम येकेरे वेर क्वारो
0: पिमार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron.